पर्वत पे तराई हरू सब नेपाली बेची पलाश सिपालो कुबुना गए दर्जा पी बाहुका सही मोला मोलिना गए हरम कुमारी छोरी।

0: गोपिनी कालिनी का किना खाली सारी सारी दोरी सारी लानी को हात जोडी
1: शत्रुबाहु
0: नारायण कलम का रुखाउ माथि चढेर
2: हरि हरि
0: यो मुरली।

0: लाई
1: कोई जननी दिनी होला प्यारा प्रभु आई नारायण
0: हरि
1: ए दर्शन दिनु होस
0: ए हामीलाई पनि

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज

0: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: थापा फोन नम्बर 9849685662 9849685662। कल्पवृक्ष बहुउद्देश्य नर्सरी फर्म भीमेश्वर नगरपालिका 3 चरीकोट भीमेश्वर नगरपालिकाको कार्यालय सँगै।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीती कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीती कथा।

सागर कलकत्ता, जगन्नाथ पुरी उड़ीसा, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश, लक्ष्मी नारायण गोल्डन टेम्पल बेलरू, कन्याकुमारी तमिलनाडु, रामेश्वरम द्वारिका गुजरात, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग साथ ही सब धाम क्षेत्र में रहकर प्रसिद्ध मंदिर दर्शन कराइने। यो यात्रा कही स्थान में बस टैक्सी बाहेक बाकी संपूर्ण यात्रा भारतीय रेल को विशिष्ट श्रेणी द्वारा कराइने। अन्य सेवा सुविधा लागत समय संपूर्ण जानकारी को लागी विष्णु अधिकारीलाई सम्झनु होला। सम्पर्क नम्बर 9841870793, 9841870793, सादो बाटो चरीकोट दोलाखा।